0: कादर कैसे दिए मचुका बिके पाए इका मूर्ख आखी है पाना लगे सजाए मगला फैला
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अरसन तीर्थ जे ना वे उतरे ना की मैल जिन पट अंदर बार गुदरते पले संसार तिन निगो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाए परवाना ही किसे केरे बाज सचे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवान एको कलम एका

वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब

0: हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 हुए ने। आहुन सर्वन करते हैं ज्ञान अमृत।

हुणे तुसी सरवण कर रहे सी ज्ञान अमृत तहत अज दा विचार। आ हुण सरवण करदे हां भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

0: जय हिंद जी, संधू साहब जय हिंद।
1: जय हिंद जी, जय हिंद। अपना रंगा सिंह जी, की हाल चाल आ?
0: हले चाले, वाह वाह भली, तुम अपना सुनाओ।
1: बहुत वधिया
0: वधिया ही होना चाहिए। वेखो आप है किसान, किसान ते मजदूर विच कोई फर्क नहीं हुंदा जदों खेतां च लग जाए ते। गल ही
1: चाहिदा भी नहीं।
0: बई देखो, फसलां वल ते आपां तवज्जो दिंदी आ, जमीन चो आपां झाड़ भी लई जांदे आ, ते जमीन नूं आपां वेला नहीं रखदे। उतो देखो आपां रसायणिक खादां पाई जांदे आ। ये जिहड़ी आपां रसायणिक खाद की वरतों करदे ना, किते ना किते अपनी जमीन नूं इहदा नुकसान हुंदा, ते आर्थिक तौर ते भी जदों लोड़ तों वध आपां खादां पाउंदे आ कि झाड़ चंगा मिले, ते फिर गल ये वाजिब नहीं लगदी।
1: बिल्कुल जी, असर पैंदा है जी। ओह देखो, जिहड़ा भी कोई काम करना है ना, जमीन दे राहीं कोई चीज़ पैदा हो रही है
0: जी,

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

परंतु कुछ समय बाद यानी 7 बजे समा रहेगा मुख्य खबरों का। 7:02 सोनी सवेर प्रोग्राम पेश करांगे। आज इस विच गीत संगीत काम दियां गल्लां दे नाल नाल कॉमनवेल्थ डे ते इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर बारे जानकारी दित्ती जावेगी। 8:40 ते मसीही भजन सुनोगे रंजना दी आवाज च। 9 बजे समा रहेगा मुख्य खबरां दा। ते शास्त्र संगीत ते प्रोग्राम सुर साधना च तनिष्क अरोड़ा दा शास्त्र गायन सुनोगे राग गुजरी तोड़ी। 9:30 ज्ञान विज्ञान प्रोग्राम च अज दे सिलसिले होंगे विश्व मारखोर दिवस जैव भिन्नता बारे डॉक्टर रजनी शर्मा की वार्ता ते इस तो बाद विज्ञान तथ्य ते खबरां। 10 बजे समा रहेगा मुख्य खबरां दा। 10:02 ते हैलो फरमाइश प्रोग्राम पेश करांगे जिस विच तुसी फोन इन राही अपनी पसंद के गीत सुन सकोगे।

0: 11:05 ते प्रोग्राम पेश कीता जावेगा तमक जलंधर पैंदी। बारह बज के पांच मिनट ते समा रहेगा बच्चा लिए प्रोग्राम बाल जगत का। सवा एक बजे प्रोग्राम पेश करांगे फौजी वीरां लई। ढाई बजे रंगली धरती प्रोग्राम च ढाडी वारां सुनोगे मुख्तियार सिंह जफर ढाडी ते साथियां पासों। साड़ी दूजी सभा शुरू होएगी शाम 4 बजे। सभा दे शुरू च पेश करांगे मुख खबरां। 4:02 ते अंग्रेजी रसाला स्पेक्ट्रम विच किरण अरोड़ा की लघु कहानी सुनोगे ते इस तो बाद इंद्रजीत सिंह पेंटल की कविता सुनवाई जाएगी। शाम 4:30 तुसी सरवण करोगे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण ते सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश करांगे। अज इस विच काम दीआं गल्लां कल दे प्रोग्राम मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल सौणी पालन च बीज शोधन बारे परमिंदर कौर जानकारी देणगे ते इस तों बाद 90 साल आकाशवाणी दे नाल सिलसिले तहत मेहर चंद नाल होई मुलाकात सुणोगे। 7:40 ते वगदे पाणी प्रोग्राम च अश्विनी कुमार सावन की कहानी सुणोगे अक दा फुल। इस दे फौरन बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। रात 8 बजे समा रहेगा प्रोग्राम थोड़ी चिट्ठी मिली दा। इस दे फौरन बाद फिल्म संगीत पेश कीता जावेगा। रात 9:15 स्पॉटलाइट 9:30 रेडियो स्कोप ते 10 बजे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों। सो एसी जी परिचय तहत प्रोग्रामा दा वेरवा। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण तुसी सुणोगे समाचार।
1: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः 4-दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह

इस वेले तुसी सुन रहे हो जी प्रोग्राम सोनी सवेर। प्रोग्राम च हुण गल करदे हां कि गर्मी कारण लोक हालो बेहाल होए पए ने, उन्हां नूं काफ़ी परेशानी का सामना करना पै रहा है। सो जनाब, इस वध रही गर्मी विच राहत तुहानूं गन्ने दा रस, लस्सी, नींबू पानी ते सत्तू ही दे सकते ने। सो इन्हां चीज़ां विच इन्हां चीज़ां का इस्तेमाल करके तुसी गर्मी तो काफ़ी हद तक बच सकते हो, क्योंकि इन्हां चीज़ां का इस्तेमाल करन च कोई परेशानी भी नहीं है, सगों ये शरीर नूं फायदा ही देणगियां। हमेशा अपने शरीर नूं तेज़ धुप ते गर्मी तो बचाउण लई ढक के रखो। हमेशा सूती कपड़ियां का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये चंगी तरह पसीना सोख लैंदे ने ते ठंडे भी रहिंदे ने। जिथों तक हो सके घरों बाहर निकलण वेले रुमाल गिला करके मूँह ते बन लो ते सिर नूं हमेशा ढक के ही बाहर जाओ। इस नाल तुहानूं गर्मी तो राहत मिलेगी। हाँ, अजिही गर्मी विच बच्चियां दा ते बजुर्गां दा खास ध्यान रखण दी लोड़ पैंदी है। उन्हां नूं वेले सिर पानी पिलाउंदे रहो। गूंद कतीरा या फिर कतीरा गूंद जिसनूं कहिंदे ने, अजकल ज़्यादा इस्तेमाल कीता जावे तां ही चंगा है, क्योंकि ये ठंडा हुंदा है ते शरीर दी गर्मी दा लैवल भी सही रखता है। जेकर बच्चियां नूं जूस पिला रहे हो तां तरबूज दा जूस जड़ा है वह वाकई बहुत वधिया है, क्योंकि ठंडा हुंदा है, ये शरीर विच पानी दी कमी भी नहीं होण दिंदा। सो छोटियां छोटियां गल्लां दा ध्यान रखण दे नाल ही असी वध रही गर्मी विच अपने आप नूं सुरक्षित रख सकते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया।

0: जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल

0: दिल निदा खान दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स

0: के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security,

0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे। आरबीआई कहिंदा है
2: जानकार बनो, सुचेत रहो।
3: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वाले का स्वागत करते हैं जी। आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से तुसी इस वेले सुन रहे हो जी प्रोग्राम मसीही भजन।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौंक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
2: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ।
3: ਯੋਜਨਾ ਉਨ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੇ ਲਿਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਬ 60 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਗੇ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਤਾ ਸਕੋ।
2: ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 3 ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे हिस्सों वाले दा स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र ते। तुसी इस वेले सुन रहे हो प्रोग्राम हैलो फरमाइश।

0: प्रोग्राम ची बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
1: मैडम जी मैं पॉल बोल रहा हूँ, सराबा नगर जलंधर तो जी।
0: जी पॉल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ची।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5वें चरण में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने अमरीका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। उधर महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन है।

आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

उदयपान, जय हिंद, दीक्षापाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश ते सारा ही परिवार। पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी तो जगराज सिंह कणकवालिया, गंगा राम मोहन लाल शौंकी ते परिवार। पिंड कबूल शाह खुब्बन जिला फाजिलका तो बलतेज, नवजोत, हरमन, हैरी, हैप्पी ते सारा ही परिवार। पिंड शाहपुर महतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल, अजयपाल, पाहुलजोत, अनाहत कौर, लवप्रीत, परविंदर। इस गीत की फरमाइश है रमी हैबोवाल अपने पूरे परिवार नाल, हैबोवाल कला हलका उत्तरी जिला लुधियाना तो। सिद्धार्थ नगर धरमपुर भाबली तो गजनन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक ते परिवार। मकुतो बिलबजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज। परवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो अशोक, परवीन, विक्रमजीत, अनमोल ते पवनीत। बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय, नमन ते अपार टिंगिया। पप्पू राजा खुशिल, संगीता, पप्पू स्माइल खुशदिल, हसमुख, संजीव, सुनीता, बंटी, आरजू, पूरा ही खुश दिल परिवार। सदर बाजार कुरावली तो अनिल, माया, राहुल, विनीत ते सोनम वर्मा। दादरी गेट भिवानी तो कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। पिंड कबूल शाह खुब्बन जिला फाजिलका तो वधावा सिंह, बलकरण, तनु, पवि, जस्सी ते परिवार। सुनदे गीत आवाज है रंगरेज सिद्धू हरां दी, प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026

0: तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रोग्राम है धमक जलंधर पेंडे जिला फाजिलका तो पिंड बाजिदपुर भोमा तो बलजीत सिंह बलदेव सिंह जग्गा सिंह वड़िंगखेड़ा तो भोला सिंह ते परिवार राजस्थान तो सुल्तान सिंह तरड़ कपिल हिमानी ते परिवार धनौरी तलीवाला तो निसार सलमानी नौशाद बीबी आलिया आयन बाबू पिंड चंचेड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली शाहीन यासमीन अरमान ते सारा ही आकाशवाणी दे नाल इन्होंने मुबारकबाद भेजी है 90 साल ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरजीत कैत मौजी कलोनी डाबा लुधियाणा तो मनीला फिलिपन तो मदन मोहन लहर सरबजीत संजू नितिका अजय एंजल लहर लाडला पोता अर्नव लहर हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू पप्पी भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर तो पदमपुर तो भगवान दास तनेजा पवन कुमार योगेश आस्था मोहित मुखीराम पूजा मनजीत तनेजा परवीन तनेजा पायल नताशा ते हिनाशा तनेजा वासदेव छाबड़ा अंश दिव्यांशी चिराग साजन छाबड़ा लालड़ू मंडी तो ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साहब राई महराजा आजाद नगर अर्जुन हरिद्वार उत्तराखंड तो गुरदासपुर तो प्रीतम दास सत्यदेवी पोतरी वानिया पोतरा अरमान अविताज कनेडा तो काका डेवक अंगुराना ते सारा अंगुराना परिवार दतरंगी तो भागवत शांति देवी लीलावती विनीता ते रुद्र वर्मा प्रेम सिंह चौड़ा मनजीत कौर चौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत करणवीर हाउस पुच कैंचिया बठिंडा तो सैक्टरपन सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी करवी बेबी हिमाक्षी गनौर तो आदिल कुमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली ते परिवार पिंड चांद मारी तो मंगत राम जगदीश रानी संदीप मिड्डा ममता रानी अभिषेक ते दिव्या मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहिनी रितिक बलवीर सिंह चौंक बत्तियां वाला श्री फतेहगढ़ साहिब तो बलविंदर सराह बिल्ला माधोपुरी राजकौर ज्योति गोल्डू बब्बू टिवाणा USA तो रामलाल करोड़ा सारा माधोपुरी लाणा शंभू दयाल खट्टक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक कुमारी पूजा जखोद राजस्थान तो जाफरा जिला फाजिलका तो फलक सिंह राजू बब्बू सोनू अमनदीप ते परिवार पिंड डाकखाना खुईया सरवर तहसील अबोह तो फाजिलका तो आस्था जयश्री संतोष हेमंत दीपक रमेश रैजल हेजल विहान रिजू बब्बू विहू चावला परिवार सारा फतेहबाद हरियाणा पुरानी तहसील चौक तो इंद्रपाल बिट्टू चंचल आंचल गगन प्रिंस जीवन सिंह ते बुक परिवार जॉन रोजी पर्ल डिकैसो विलिस जनकपुरी सहारनपुर तो प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बेबी राध्या साहू पिंड नागर कोरा जिला राजनंदगांव 36

कर दो। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे, ये सब ने महाराष्ट्र तो। आओ सुनते हैं सब दी फरमाइश ते गीत। आवाज है चांदीराम ते शांति देवी दी।

झारखंड तो मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा, हसन, बाबू अहद, मिफ्रानाज से बेबी चाहत, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला, श्री गंगानगर राजस्थान तो, पटेल नगर मलोट तो, डॉक्टर रमेश कुमार चचोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरसू ते गुड्डू, चौधरी जुल्फिकार अली, चक लले लेखा, बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान तो, ते इन्हां दा सारा परिवार। शिकायत भी भेजने की तुसी साडा मैसेज शामिल नहीं करना है। जे सुन लिया होएगा तो असी तुहाडा मैसेज साडे लई हर दोस्त बराबर है। सो कोई भी गिला शिकवा इत्थे नहीं है। प्रोग्राम है धमक जलंधर पेंदे पिंड गाला जिला अंबाला हरियाणा तो राजेंद्र कुमार, मलकीत, आरती रानी, राघव हरमन ते सारा परिवार। नेड़े फगवाड़ा तो पिंड नंगलखेड़ा तो बालकृष्ण, प्रवीण, मुनीश, राहुल शर्मा। सैक्टर 18 चगादरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पलोमा, डॉक्टर ईशानी। बंगाली पंजा नागपुर तो प्रकाश रंभाड़े, भारती जानवी, काशीवास नागपुर तो हर्षल, वैष्णवी रस भाड़े। मंडी अरनीवाला तो बलविंदर बुट्टर गोरा, गुरसांज भुल्लर ते परिवार। पिंड तेजा मोहरी अंबाला तो बंसीलाल संधु, पोतरा कबीर, जजबीर संधु, पोतरियां वरनीत, पवनीत संधु परिवार सारा। साधु शहर राजस्थान तो राम कुमार ते चंद्रकला रेवाड़। नज़दीक नेड़े बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन, अमन, दिवांश ते डॉक्टर मदन लाल। पिंड कैरो जिला तरन तारण तो गुरदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, काशीपन ते पोतरा गुरशबद। मलकीत मेन बाजार गुनियाणा मंडी तो जोगिंदर सिंह पिंड सीविया तो सुरजीत सिंह पिंड ख्याली तो कलविनत सिंह मलोट तो। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो

मैं अरोड़ा ममता कीर्ति ते भूमिका। आप सुन रहे हैं गीत नरेंद्र बीबा की आवाज़ में।

करण प्रताप सिंह, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नास, नवाज शेख, दानिश शमन अफरीदी, मास्टर खिल्लू परवेज लखनऊ उत्तर प्रदेश तो, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, आरव अर्पिता, डाबकी रोड अकोला तो, ज़िला रोपड़ पिंड पक्खू माजरा तो, सुरेंद्र कुलवंत, सुखजोत भुपिंदर, मनजोत ननुआ परिवार सारा, गांधी चौक बाड़मेर तो, बबलेश डैनी, मनीष पवार, रामदेवरा तो, दिनेश चौहान, डोंगरी तो, बाबू राम जयपाल, खलीफा बाबरी तो, खुदा बख्श खलीफा, मल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो, विनोद वीपी, अशोक सुशील बीके, कैलाश नीलम, रमा पाली वीके ते विनोदपुरी, कृष्णा पाक दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह चौड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी तो, पिंटू दीवाना, रजिंदर सिंह ओबराय, आओ सुनते हैं सब की फरमाइश ते गीत, आवाज़ है आशा सिंह मस्ताना दी।

रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह, राहुल कस्बा, बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा तो लोको कलोनो लोहारो हरियाणा तो बिलो सिंह चंडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरका, योगेंद्र, नरेंद्र, पंचकुला तो वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्मी।

अंजलि, नेहा, गुरमीत, आंचल, शुभम, लवली। अकरम हुसैन, प्रिंस, बेगम इशरत, अकरम वसीम, रुबीना, आरिस, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार तो मोहम्मद आसिफ खान, निकत परवीन, ये सब ने नास मंजिल में सोल सीता मणि तो। इन जी उत्तम सिंह चंगेल मोरस ते सारा ही परिवार सुनदे गीत रत्नीका तिवाड़ी दिवास विच।

0: हेलो
1: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

असें माफी चाह्न्ने आं किसे कारण वश सीरत नहीं कीती वाली दी आवाज़ विच गीत नहीं सुनवा पा रहे। सुनदे आं गीत आवाज़ है शमशाद बेगम ते मोहम्मद रफी दी।

0: ਫਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਵਜੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज़ियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज़ियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਜਗਤ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meter ਯਾਨੀ 873 kHz ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਵਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई

है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी यादविंदर सिंह तो प्रदेशक खबरां सुनो। पंजाब चोन कमीशन ने दस्या है कि सूबे च आउंदी 26 मई नूं हो रही म्यूनसिपल चोणां लई कुल 7555 उम्मीदवार चोन मैदान च ने। आम आदमी पार्टी के 1801, कांग्रेस के 1550, भारतीय जनता पार्टी के 1316, श्रोमणी अकाली दल के 1251, बहुजन समाज पार्टी के 96 अते 1528 आजाद उम्मीदवार ये चोणां लड़नगे। पंजाब नगर कौंसलर नगर पंचायत

फौजी वीर जय हिंद पेश कर रहे हैं थोड़े मुंदन चले फिल्मी नक में। ते आओ सुनते हैं लता मंगेशकर नू फिल्म है चिराग।

चिराग फिल्म का गीत सी लता मंगेशकर का गाया। तीसरी मंजिल फिल्म का गीत सुन दें आवाज़ मोहम्मद रफी दी।

तीसरी मंजिल। तुसी मोहम्मद रफी ने सुन रही सी इस फिल्म का गीत सी फिल्म तीसरी मंजिल का। हुण सुनदे हां दस्तक फिल्म विच लता मंगेशकर नूं।

0: थोड़े देर से सुन रही थी। ऊंचे लोग फिल्म द गीत, महेंद्र कपूर ते लता मंगेशकर दा गाया होया। फौजी वीरे थोड़ा दस है कि तुसी ये प्रोग्राम रोजाना साढ़े इस केंद्र तो सुन रहे हो। इसका समय होंगे बाद दोपहर 1:15 तो लैके 2:15 तक, और इस दौरान तुसी सुन रहे हो खबरां पंजाबी विच 1:40 ते 1:50 ते उर्दू खबरां जो कि साढ़े दिल्ली केंद्र तो रिलीज होंदियां ने। ते फिर 2 बजे कुछ होर थोड़े लिए गीत पेश करते हैं, ते बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनते हो प्रोग्राम रंगली धरती, और साढ़े अज के कलाकार मुख्तियार सिंह जफर ढाडी ते साथी तुसी इन्हां दियां वारां सुनोगे। दिन दे 1:40 हो रहे ने, आओ सुनते हैं खबरां पंजाबी विच।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दी खास खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अते अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अज नवी दिल्ली च कई मुद्दयां ते चर्चा कीती। दोवां धिरां ने भारत अमरीका रणनीतिक भाईवाली नूं महत्वपूर्ण करार दिता। सरकार वजन ते माप निरीक्षण प्रणाली नूं मजबूत करन लई जांच केंद्रां दी भूमिका दा करेगी विस्थार। अज पाकिस्तान दे बलोचिस्तान च इक रेलवे पटड़ी ते होए धमाके च 30 लोकां दी मौत ते कई जख्मी। फैडरेशन

0: करने में हम सफल हुए हैं। किसी को गनशॉट इंजरी नहीं है, टियर गैस की शेल की इंजरी एक कैदी को आई है। इसके अलावा दो और कैदी हैं जिनको चोटें आई हैं, जो कि उनकी आपस में ही जो भिड़त हुई थी उसके कारण जो चोटें आई हैं। प्रिजन के अंदर अलग अलग जो ग्रुपबाजी लगातार ही चलती रहती है, तलखी आ जाती है, तो उस वजह से बेसिकली आपस में टसल हुआ।
1: देशव्यापी फिट इंडिया मुहिम के हिस्से वजों सीमा सुरक्षा बल दे जलंधर स्थित पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर ने आज फिट इंडिया साइड ऑन साइकिल मुहिम के 75वें एडिशन के हिस्से वजों एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इसका उद्देश्य BSF के डायमंड जुबली जश्नों मनाने लिए शरीरिक तंदुरुस्ती, एक सेहतमंद जीवन शैली और वातावरण सुरक्षा को उत्साहित करना रहा। यह रैली पंजाब फ्रंटियर हैडक्वार्टर BSF के अश्विनी स्टेडियम तो शुरू हुई, इस 250 तो बाद BSF कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस समागम ने शरीरक तंदुरुस्ती बनाई रखने ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनाने लिए वचनबद्धता दर्शाया। साइकिल रैली में BSF पंजाब फ्रंटियर के इंस्पैक्टर जनरल डॉक्टर अतुल फुलचेले ने झंडी दे के रवाना किया। साइकिल रैली ने जलंधर दियां वख-वख महत्वपूर्ण थावां ते रस्तियां चों लंघते हुए शरीरक तंदुरुस्ती का सुनेहा दिता। उधर आकाशवाणी की 90वीं वरेगंढ मनाने लिए करस्योंग इकाई ने अज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। 3 किलोमीटर की इस दौड़ में 50 तो वध मर्द ते महिला दौड़ाकों ने हिस्सा लिया। कुरस्योंग विधायक सोनम लामा ने मैराथन नूं झंडी दिखाई। अज पाकिस्तान के बलूचिस्तान च एक रेलवे पटड़ी से हुए धमाके च 30 लोग मारे गए तो कई जख्मी हुए ने। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नेड़े होया। एक रेलगड्डी नूं मामूली नुकसान, जबकि नेड़े खड़िया 10 होर रेलगड्डिया नूं नुकसान पहुंचा। धमाके तो बाद पेशावर जाण वाली जाफर एक्सप्रैस नूं क्वेटा रेलवे स्टेशन से रोक दिता गया। शहर के अंदर अदारियां नूं हाई अलर्ट से रखा गया। फैडरेशन कप एथलैटिक चैंपियनशिप में गुरविंदर वीर सिंह ने मर्दां के 100 मीटर मुकाबले च सोने का तमगा जितया। उन्होंने उपलब्धि 10.09 सैकेंड के नवे राष्ट्रीय रिकॉर्ड नाल हासिल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अथलीट गुरविंदर वीर सिंह नूं सोने का तमगा जितने ते वधाई दिंदिया कहा कि 2 दिनों च दूजा नैशनल रिकॉर्ड तोड़ के पंजाब के पुत्र ने देश दुनिया च सूबे का नाम भी चमकाया है। IPL क्रिकेट में अज 2 मैच होंगे। पहले मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला मुंबई च राजस्थान रॉयल्स नाल बाद दोपहर 3:30 शुरू होगा। दूजा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ते दिल्ली कैपिटल्स दरमियान शामी 7:30 खेडिया जाएगा। जेतू टीमों नूं प्ले ऑफ च जगह मिलेगी। पंजाब किंग्स ने कल टूर्नामेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स नूं हराया। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अते अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अज नवी दिल्ली च कई मुद्दियां ते चर्चा की। दोवां धिरां ने भारत अमरीका रणनीतिक भाईवाले नूं महत्वपूर्ण करार दिता। सरकार वजन ते माप निरीक्षण प्रणाली नूं मजबूत करन लई जांच केंद्रां दी भूमिका दा करेगी विस्तार। अज पाकिस्तान दे बलूचिस्तान च रेलवे पटड़ी ते होए धमाके च 30 लोकां दी मौत, कई जख्मी। फैडरेशन कप एथलैटिक चैंपियनशिप च गुरविंदर वीर सिंह ने मर्दां दे 100 मीटर दौड़ च सोने दा तमगा जितया। अते IPL क्रिकेट विच अज मुंबई इंडियंस दा मुकाबला मुंबई च बाद दोपहर 3:30 राजस्थान रॉयल्स नाल, अते कोलकाता नाइट राइडर्स दा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल शामी 7:30 होवेगा। इस दे नाल ही राष्ट्र खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। परदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6:20। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी की अहमियत का इरादा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की ज़रूरत उजागर की है और कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई अहमियत की हामिल है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया है। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके की दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा को ज़बरदस्त तबकत हासिल हो गई है। सरकार ने सभी भारतीय शहरियों को ये सलाह दी है कि वो इबोला वायरस फैलने के मद्देनज़र कांगो, युगांडा और जनूबी सूडान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में क्वेटा शहर में रेल पटरी के नज़दीक धमाका होने से कम अज़ कम 24 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। और टेनिस में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से।

खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसीतर मौजूदात पर तबादले ख्याल किया और भारत अमरीका कलीदी साझेदारी की अहमियत को दोहराया। साथ ही उन्होंने तजारत, तवानाई, मोबिलिटी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत इश्तराक के अहम शोबों को उजागर किया। हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे का तस्करा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतजामिया के पहले दिन से ही दोनों मुल्क बाकायदगी से राबता कायम किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने पर उनकी बातचीत में खलीज के खित्ते के मौजूदा हालात और वाकयात पर तवज्जो मरकूज की गई। साथ ही क्वाड मीटिंग से कबल भारत बहरुल काहिल खित्ता बदस्तूर एक अहम तरजीह है। वजीर खारजा ने भारत और अमरीका के दरमियान तजारती समझौता जल्द से जल्द तय किए जाने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तवानाई की तजारत में हालिया तौसीक का खैर मकदम किया और कहा कि भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी में अलग अलग वसीलों से तवानाई की सप्लाई को मरकजी हैसियत हासिल है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अवाम से अवाम के राबतों को खास मुकाम हासिल है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कानूनी और दुरुस्त शक्ल में मोबिलिटी मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने तनाज़ात को हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करने के भारत के मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि भारत महफूज और बिला रुकावट बहरी तजारत और लेन देन की हिमायत करता है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के सबसे अहम कलीदी साझेदारों में से एक करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अहम मामलात पर भारत और अमरीका के कलीदी एतबार से यकसा मौक़िफ़ हैं, जिससे आने वाली सदी की समत तय होगी। जनाब रूबियो ने यह भी कहा कि तवानाई के मामले पर भी भारत और अमरीका कलीदी एतबार से यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए चार दिन के दौरे पर कल भारत पहुँचे हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग के वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने ज़बरदस्त सबकत हासिल कर ली है। आखिरी खबरें मिलने तक वो 44,891 वोटों से आगे चल रहे थे। CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक तीसरे मुकाम पर चल रहे हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथी पोजीशन पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मज़मून शेयर किया है, जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि किस तरह खान चेंग जोंग के 5 खजाने सिक्किम के सफ़र को रोशन करते रहे हैं, जिससे विकसित सिक्किम 2047 की राह हमवार हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मज़कूरा मज़मून में खान चेंग जोंग को सिक्किम की सरजमीन, उसकी यादों और ज़मीर के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया है। इस मज़मून में सिक्किम के लोगों की ज़िंदगी में खान चेंग जोंग की सकाफती, रूहानी और तारीखी अहमियत की अक्कासी की गई है। सिक्किम बाज़ाब्ता तौर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुकम्मल मेंबर बन गया है। गैंगटोक में सरकारी ज़राए ने बताया कि सिक्किम ने दरिया को महफूज रखने, आबपाशी और सैलाब से पैदा हालात से निमटने के प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की तजवीज़ें पेश की हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की हालिया मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर मुल्क में निराज की कैफियत फैलाने के लिए एक संगीन साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान से सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी साजिश का इशारा मिलता है। जनाब पीयूष गोयल ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क को बदनाम करना, आईनी इदारों की तौहीन करना और भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत के लिए गैर मुल्की ताकतों से अपील करने के लिए बैरून मुल्क जाना कांग्रेस पार्टी की असली नीयत रही है।
صارفین کے امور کے محکمے نے ملک میں وزن اور پیمائش کی جانچ کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے سرکار کے منظور کردہ جانچ مراکز کے رول کو وسعت دی ہے۔ اس کے لیے سرکار نے 2013 کے قانونی میٹرولوجی ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔

तो इसे सुन रही सी, काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गीत। उन संध्या आशा भोसले थे, शैलेंद्र सिंह द गाया हुआ गीत। फिल्म है जहरीला इंसान।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2:15 ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर

0: ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश

0: जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

0: चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिठिया मिठिया। मैं जिमें कि तुहानू वादा कीता सी, इस रविवार तुहानू जरूर मिलांगी। मैं हाजिर हाँ प्रोग्राम लेके चिठिया मिठिया। तो हुणे आपां बलकार सिद्धू की आवाज़ में बहुत ही सोहना जिहा गीत सुन रहे सी डोरिया। तो थोड़ी जी गल्लां भी कर लिया बलकार सिद्धू के बारे। बलकार सिद्धू पंजाब के उगे गायक अदाकार ते सियासतदान हन। संगीत जगत विच वो अपने साफ सुथरे लोक गीतां ते सभ्याचारक गायकी लई जाने जांदे ने। जेकर उन्हां दे मुढले जीवन ते संगीतक सफर की गल की जाए तो मैं दस दवां, बलकार सिंह सिद्धू का जन्म 10 अक्तूबर 1973 नूं जिला बठिंडा दे पिंड पूला विखे पिता रूप सिंह सिद्धू ते माता चरणजीत कौर दे घर होया सी। उन्होंने अपने चाचा प्रसिद्ध दाढ़ी गुरबख्श सिंह अलबेला जी तो संगीत की सिक्ख्या प्राप्त की। उन्होंने कई गीत सन जिमें कि बहुत ही मकबूल होए, जिमें कि लौंग तवीतड़िया, झांजर दा छनकारा, मेरी खंड मिश्री ते चुबारे वाली बारी शामिल सन। उन्होंने पंजाबी फिल्म देसी मुंडे 2016 में फिल्म आई सी। इस फिल्म दे नाल, देसी मुंडे फिल्म दे नाल उन्होंने अदाकारी दे खेतर विच भी कदम रख्या। जेकर उन्होंने सियासी सफर की गल की जाए तो उधर भी उन्होंने हाथ अजमाया। तो हुण आपां प्रोग्राम नूं अगे वधांदे होए कुछ होर चिट्ठियां भी पढ़ते हैं। तुहाडे लई बहुत ही चिट्ठियां आईयां ने, एक एक करके मैं चिट्ठियां की छंटी करदी हाँ, फिर देखदी हाँ कि किन्हां दी चिट्ठी पढ़नी है, किहड़े गीतां की फरमाइश पूरी करनी है। तो बहुत ही वधिया लगता है जदों असीं अपने स्रोतियां दे नाल जुड़ जाने। चिट्ठी आई है बागा पुराना तो सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, तेंग फतेह सिंह रखरा, पोत्री जस गुर रखरा। तो ये हंसराज हंस का एक बहुत ही प्यारा गीत है, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी। आपां तुहानू ये गीत जरूर सुनावांगे थोड़ी ही देर च, मगर कुछ होर चिट्ठियां भी आपां पढ़ लैने। चिट्ठियां बहुत सारियां ने। एक चिट्ठी आई है बठिंडा रोड डवाली तो, भेजन वाले ने रजिंदर नारंग, अंजू नारंग ते मोहित नारंग। फिर चिट्ठी भेजी है सहारनपुर तो, सुरेश नारंग ने, आशा नारंग ने। फिर चिट्ठी लिखी है खाने दी ढाब मलोट तो, शमशेर सिंह कौलतर, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर ते मनताज ने चिट्ठी लिखी है। इन्हां तों इलावा चिट्ठी आई है मुकसर तो, बब्बू सिंह तीमन, बलजिंदर कौर तीमन, रवनीत, निशु ते भुपिंदर ने। फिर चिट्ठी आई है मंडी गोलू वाला राजस्थान तो, भेजन वाले ने ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। इन्हां तों इलावा जिन्हां ने सानू चिट्ठी लिखी है बहुत ही दूरों चिट्ठी आई है, रेगुलर सानू चिट्ठियां लिखते हैं तो साड़ी कोशिश होंदी है कि इन्हां दे नाम भी रेगुलर ही पढ़े जान। मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र तो चिट्ठी आई है अभिजीत ग्वानकर राही, श्रीमती सरिता ग्वानकर, प्रिंस एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत ग्वानकर, प्रनीता ग्वानकर, अर्जुन ग्वानकर जिन्हों प्यार ना टुक टुक भी कहते हैं। तो इन्हों ही कुछ होर सज्जन मित्र ने अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो।

हाँ जी दोस्तों, हुने आपां हंस राज हंस दी आवाज़ विच एक बहुत ही प्यारा जिहा गीत सुन रहे सी। गीत दे बोल ने नित खैर मंगा मैं तेरी सोनी है। ते हुन आपां प्रोग्राम नूं अगे वधाउने आ, कुछ गल्लां भी शेयर कर लैने।

राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शायना शर्मा ते निवान शर्मा। फिर चिट्ठी आई है पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका, सोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर, राज मिस्त्री पिंड तो, माहुआना बोदला, बलविंदर कौर बूक, सुरिंदर कौर बूक, माघ सिंह वारवल, बलदेव सिंह ते अमर लाल। तो जिमें कि मैं पहला ही तुहानूं दस्सिया सी, एक गीत की फरमाइश आई है बहुत ही जिमें कह लो ना ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है। गीत दे बोल ने सूरमा पंज रतिया महेंद्र जीत सेखू दी आवाज़ विच। आओ सुनते हैं गीत।

हां जी दोस्तों, वाह क्या गीत सी महेंद्र कपूर दी आवाज़ विच। हुण तुहाडे सारिआं तों इजाज़त लैण दा समां आ चुका है। वैसे जाण दा दिल तां नहीं कर रिहा मगर समां इजाज़त नहीं दे रिहा, मगर कोई गल नहीं, आपां फिर तों आवांगे अगले रविवार या किसी होर रविवार तुहानूं जरूर मिलांगे। बहुत वधिया लगदा है अपने स्रोतियां दे नाल जदों असीं गलबात करदे हाँ, इंटरैक्ट करदे हाँ, बहुत ही चंगा महसूस होंदा है। तो हुण आपां अपने स्रोतियां वास्ते रब तो यही दुआ करते हैं कि साडे जिन्ने भी स्रोते हैं बहुत खुश रहन, चढ़दी कला च रहन। तो मेरे वालों यानी कि आर जे पूनम सेठी वालों तुहानू सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार।

प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। ए बोल भगत रविदास जी द्वारा उचारित ने, जो अकाल पुरख नाल भगत जना दी प्रीत दे लखायक ने। दरअसल अकाल पुरख प्रभु पति नाल प्रीत उत्तम प्रीत है, प्यारी प्रीत है। जिड़े प्राणी सच्ची प्रीत विच विश्वास भरोसा रखते हैं, वह मन ही मन विच उस प्रभु दे दर्शन दीदार दी आस रखते हुए नैणा विच प्रभु दे दर्शना दी तांग रखते ने। प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। सरवण करदे आ भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मैं चितवा वासा नैनो तार तुहारी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मने मैं चितवों आसा नैनो तार तुहारी। रहाओ ओए दिन पहर मूरत पल कैसे ओए पल करी किहारी खुले कपट तपट बुझ तृष्णा जीमो पेख दरसारी कौन सो जतन उपाओ किनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संतै संग उधारी। ए पाक बचन धन श्री गुरु अर्जन देव जी दे राग के दारा विच उच्चारण कीते होए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 1120 उपर सुभाए मान हन। प्रिय की प्रीत प्यारी प्रिय की तो भाव है प्यारे प्रभु जी दी प्यारी तो मुराद है जिहड़ी मन नू पा जाए मन नू चंगी लगे। भाव धन श्री गुरु अर्जन देव जी शब्द दा मरकजी भाव केंद्री भाव जाहर करदे हन कि मेरे मन नू प्यारे प्रभु जी दी प्रीत खिच पाउंदी रहिंदी है। जदों विचार करिए तां इउं प्रतीत हुंदा है कि प्रीतां दीआं किस्मां अनेकां हन अते प्रीतां करन वाले भी अनेकां हन पर जो प्रभु परम पिता वाहगुरु सारिआं नू प्यार करदा है अज दे पदार्थवादी युग विच संसार दे बहुत वड्डी गिनती विच जीव पदार्थां नाल शरीरां नाल ही प्रीतां पाई बैठे हन पर जो वाहेगुरु साहिब सारे संसार दा करता है हरता है उस नाल प्रीत पाउण वाले जीव बहुत थोड़े हन। धन श्री गुरु अर्जन देव जी राग जैत सरी विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 700 उपर संसारी प्रीत अते प्यारे प्रभु दे प्यारियां दी प्रीत दा जिक्र इउं करदे हन। कोई विरला इंसान इस भेत तों जाणू है कि इत्थे जगत विच असली प्रीत की है अते अपना असल मित्र कौन है। जिस मनुख उत्ते वाहेगुरु दयावान हुंदा है उही इंसान इस विचार नू समझदा है। कोई जाने कमन इह

हाँ जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै तां की निर्मल रीत। पर संसारी प्रीत बारे धन श्री गुरु अर्जन देव जी बचन करते हैं। माता पिता इस्त्री पुत्र रिश्तेदार प्यारे मित्र दोस्त अते भरा ये सारे संबंधी पहले जन्मां दा संजोग होने कारण इत्थे इस जन्म विच मिल गए हैं। पर अखीर विच इन्हां सभना विचों कोई भी साथ नहीं निभाउंदा। इसलिए गुरुवाक है कि झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। साडी प्रीत केवल संसारक शरीरक संबंधा तक ही सीमित नहीं बल्कि मनुख पदार्था नाल भी प्रीत पाई बैठा है जिस कारण करके इस इंसान नू प्रिया की प्रीत प्यारी नहीं लगती। वह पदार्था का भी गुरु साहब अगले पद विच जिक्र करते हैं। मोतियां दिया मालावां सोना लाल हीरे अते मनुखी मन नू खुश करन वाली माया इन्हां नाल भी प्रीत पाया सारी उम्र हाय हाय करदियां बीत जांदी है पर मन कदे नहीं रजदा बल्कि इन्हां दी प्राप्ति तो उपरंत मन दी भुख होर होर वधदी है कि मेरे पास हाथी रथ हवा दे वेग दी तरह तेज दौड़न वाले घोड़े होन मैं तनाड़ होवां मेरे पास जमीन होवे जिसदा मैं मालक होवां मैं चार तरह दी सेना दा मालक होवां। पर इन्हां उपर दसियां होईयां वस्तुआं ते इन्हां दी प्रीत प्रति सतगुर समझाउंदे हन कि मनुख इन्हां विच्चों कोई चीज भी इत्थों चलन समय नाल नहीं जांदी इसलिए इन्हां नाल पाई हुई प्रीत वाला मनुख इत्थों खाली हथ नंगा ही उठ के तुर पैंदा है। इस पर थाए गुरवाक है मात पिता बंता सुत बंदप इष्ट मीत यार भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को ना सहाई। मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बेहानी अवद ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ असव पवन तेज धनी भूमन चतुरांगा संग न चालियो इन मैं कछुए ऊठ सिधायो नांगा। हे सतगुरु जी असी अलपग जीवां दी बेनती सुनो अते आप जी कृपा करके ए दसो कि फिर असी जीव कैसी प्रीत अते किस नल प्रीत करिए। सेवकां दी बेनती सुन के सतगुरु गुरु अर्जन देव जी जैतसरी दी वार विच एक पौड़ी उचारण करदे हन कि जिवें मच्छी पानी तों बिना जीव नहीं सकदी जिवें बारिश दी एक सुवंती बूंद तों बिना पपीहा रज नहीं सकदा जिवें कंडे हेड़े दी आवाज हरन नूं मोह लैंदी है ओ उस वल ही दौड़ उठदा है जिवें भौरा फुल दी सुगंधी दा आशक हुंदा है फुल नाल मिल के अपने आप नूं फसा लैंदा है तिवें संतां नूं प्रभु नाल प्रेम हुंदा है। प्यारे प्रभु जी दे प्यार प्रीत दी बरकत नाल गुरमुख प्यारे दीदार करके दुनिया दे पदार्थां वलों रज जांदे हन। इस प्रथाए गुरवाक है ज्यों मछली बिन पानीए क्यों जीवन पावै बूंद विहूणा चातर को क्यों कर तृप्तावै नाद कुरंके बेदया सनमुख उठ धावै भवर लोभी कुसम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। विचाराधीन शब्द द्वारा गुरुदेव फरमाउंदे हन कि मेरे मन नूं प्यारे प्रभु जी दी प्रीत खिच पाउंदी रहिंदी है भाव मेरे मन विच वाहिगुरु जी दे लई हमेशा प्रीत बनी रहिंदी है। जिवें सच्ची प्रीत दे कारण प्रभु जी मैं अपने मन विच ही मस्त रह के मैं तेरे दीदार दियां आसां चितवदा रहिंदा हां मेरियां अखां विच तेरे दर्शनां दी तांग भरी उडीक बनी रहिंदी है। इस प्रथाए गुरवाक है मगन मनै मैं चितवो आसा नैनो तार तुहारी रहाओ। शब्द दे पहले पद विच ही गुरदेव फरमाउंदे हन कि ओ दिन ओ पहर ओ महूरत ओ पल बहुत ही भागां वाले हन ओ कड़ी बड़ी भागां वाली हुंदी है जदों मनुख दे अंदरों माया दी तृष्णा मिट जांदी है। इसे तृष्णा कारण जो मन दे किवाड़ बंद हो चुके सन ओह दरवाजे झट पट खुल जांदे हन अते प्रभु जी दा दर्शन करदे ही मेरे अंदर आत्मक जीवन पैदा हुंदा है। इस पर थाए गुरुवाक है ओए दिन पहर मूरत पल कैसे ओए पल करी किहारी खुले कपट तपट बुझ तृष्णा।

नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1

0: एक चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। पेश है अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा की जानकारी ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां घर आ जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो।

90 साल आकाशवाणी के नाल इस सिलसिले च अज साडे मेहमान ने मेहरचंद जी। मेहरचंद जी बारे असीं थोड़ा तारुफ करवा दिए। ग्रामीण बैंक पंजाब वह तो सेवा मुक्त ने, उन्होंने इन्होंने अपनी सेवा दी है ते अज इन्हां नाल गल्लां बातां करांगे रेडियो नाल इन्हां दीआं सांझां दे बाबत। क्योंकि रेडियो मेहरचंद जी आपां सारे जाणदे आ कि एक समय रेडियो का ही बोलबाला सी, या असीं इह कह सकदे

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया देश पराया
2: हां जी सुनी जी गल बात
3: दो बोल गाउंदे लोने संसा

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया

0: ये लफ्ज़ सच्ची दिल नू तू पा के लै गया है ना।
1: जी
0: इहो जे कई अल्फाज ने जिहड़े हौली हौली साड़ी बोली चो निकलते जा रहे ने, मिठे ने, प्यारे ने, है ना। अचानक जदों एक बार सामने आउंदे तो इंज लगता दिल ते ठार ठंड पै गई हुई है ना। सो
1: जी
0: लाणा शब्द सुन के बहुत वधिया लग्या, और गुजारिश कर दी अपने सुनने वालों नू कि इदां दे शब्द थानू भी लभण तो जरूर लिख के भेजो। जिंदा रहणगे, समय के नाल नाल तब्दीलियां आउंदियां रहिंदियां, पर साड़ी कोशिश है कि साड़ी विरासत ये जिहड़ी बोली है ये वो शब्द जिहड़े उन्हां नू भी जिउंदे रखिए, नाल नाल तोर सकीए, है ना।
1: बिल्कुल
0: बाकी इन्होंने कुलदीप मानक होरां नाल मुलाकात की गल की है जी। कुलदीप मानक होरां दी एक इंटरव्यू, एक मुलाकात साढ़े कोल मौजूद है जी। गाए बगाए जरूर कदे ना कदे नेड़ले भविष्य तुहानू सुणावांगे किसी ना किसी प्रोग्राम दे विच।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया बलविंदर बिला माधोपुरी जी साढ़े प्रोग्रामां नू पसंद करन वास्ते और अपनियां खूबसूरत भावनावां दा इजहार करन वास्ते।
1: हुण वारी आ गई है जी ईमेल्स दी। जी ये सब तो पहली ईमेल शामिल कर रहे हैं सुल्तान सिंह तरड़ होना दी हनुमानगढ़ राजस्थान तो।
0: जी
1: कहिंदे कि 90 साल आकाशवाणी दे पूरे होण ते बहुत बहुत शुभकामनावां
0: वाह वाह वाह वाह, साडे
1: जी।
0: वालों भी आप जी नूं बहुत बहुत शुभकामनावां जी। एक साल तो प्रोग्रामां दा, खास प्रोग्रामां दा सिलसिला जारी है और ये 8 जून नूं, जून दा महीना भी चलते रहणगे प्रोग्राम, वैसे
1: बिल्कुल जी
0: 8 जून 2026 नूं 90 साल पूरे हो जाणगे आकाशवाणी दा प्रसारण देश विच शुरू होया, जिहड़ा कि 1936 दे विच शुरू होया सी।
1: अगले दिन क्या तुसी हैलो फरमाइश दे प्रोग्राम दे विच साडा फोन नहीं चुकदे सा फोन फाजिलका दे बहुत वैसे तुसी फोन प्रोग्राम च शामिल करदे हो पर साडा
0: जी
1: प्रोग्राम नहीं लैंदे साडा साडा
0: जी
1: फोन नहीं लैंदे साडा फोन भी कहिंदे इस प्रोग्राम च शामिल करया करो। अगले लिख देने कि नजराना देश पंजाब दे विच शुरू करो ते SMS मैसेज ते हिंदी गीतां दी फरमाइश शुरू करो।
0: देखो जी, नजराना प्रोग्राम देश पंजाब दे विच ऑलरेडी चल रहा है, शुरू करन वाली इहदे विच कोई गल ही नहीं है। तुसी देश पंजाब प्रोग्राम सुनो, तुहानू जरूर ये प्रोग्राम मिलेगा। दूसरी गल, थोड़ी शिकायत कि फोन नहीं चकदे, सचो सच दसीए तो गल ये है जी कि साढ़े स्टूडियो च बैठे अनाउंसर नूं ये पता ही नहीं हुंदा कि फोन कित्थों आ रहा,
1: जी
0: क्योंकि असी कॉलर आईडी दा इस्तेमाल नहीं करते। अगर कॉलर आईडी होवे भी तो मोबाइल नंबर तो, लैंडलाइन तो कोई कॉल आई होवे तो अपना एरिया कोड तो पता लगा सकते हैं कि कहड़ी जगह तो फोन आ रहा।
1: जी
0: मोबाइल ते आ रहे किसी भी फोन तो ये नहीं पता लगता हुंदा कि कहड़े इलाके तो आ रहा। स्रोता खुद ही फोन पर दसते हैं कि असी फलानी जगह तो बोल रहे हैं। इस करके यहो जी कोई गल नहीं है या वजह नहीं है कि असी सिर्फ फाजिलका वाले के फोन चुकते हैं, बाकियों के फोन नहीं चुकते हैं। हाँ, बाकी भी सारे मेहनत नाल फोन मिलाते हैं, थोड़े वास्ते भी गुजारिश यही है कि तुसी मेहनत के नाल फोन मिलाओ, जरूर और जरूर लगेगा प्रोग्राम दे विच।
1: बिल्कुल जी साडे इस विच कोई भी भूमिका नहीं है कि
0: जी
1: कहड़े लिसनर दा फोन कित्थों आ रहा है ते इस विच उन्हां दी मेहनत ही है तो तुसी भी इसी तरह लगातार मेहनत करो जरूर फोन मिलेगा तुहाडा।
0: जी बल्कि मैं तो ये कहना कि कई बार असी गुजारिश करते रहने हैं स्रोतियां नूं कि थोड़ा थोड़े दिन पहले ही या कल ही फोन लग्या सी, इस करके थोड़ा जिहा विच गैप पा दिओ तां जो बाकी सुनने वालों के फोन लग सकण इहदे विच।
1: अगला ईमेल है जी पिंड हीरावाली फाजिलका तो पक्के स्रोता
0: जी लिखा
1: इन्होंने
0: है पक्के
1: लिखा होया जी इन्होंने
0: अच्छा जी
1: सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदू पार्वती हिमांशु गुदारा सरवण रिडवा ते हजारी लाल शर्मा
0: लोहे वर्गे पक्के ने जी
1: हाँ जी कहिंदे कि तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम हर वार सुनदे हां 16 तारीख नूं सोहन जी ते प्रभजोत जी ने बहुत ही वधिया प्रोग्राम पेश कीता मेरा भी मेल शामिल होया।
0: जी
1: 18 तारीख नूं FM रेनबो जलंधर दा प्रोग्राम हैलो जलंधर सुनिया RJ रमनेश कौड़ा जी ने बहुत ही वधिया प्रोग्राम पेश कीता। 19 तारीख नूं राती खेड संसार प्रोग्राम सुनिया जिस विच वरिंदर जी ने जूनियर नैशनल एथलैटिक खिडारन माया जी नाल कीती गलबात बहुत ही वधिया लगी। 20 तारीख नूं शामी युववाणी दा सैगमेंट सुनिया यंगिस्तान जिस विच RJ रितिका जी ने म्यूजिक आर्टिस्ट सरबजीत सिंह मेरा नाल कीती गलबात इन्हां नूं वधिया लगी। बाकी ते प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी हैलो फरमाइश सोहणी सवेर सारे ही बहुत चंगे लगते ने कहिंदे प्रोग्राम दिल चाहता है साडी पहली पसंद बन गया है।
0: वाह,
1: एक बार इन्हां ने आकाशवाणी दे 90 वरे पूरे होण ते मुबारकां भेजियां ने।
0: आप जी नूं भी बहुत बहुत मुबारकां जी, और जिन्ने प्रोग्राम तुसी सुने उन्हां नूं पसंद कीता उन्हां वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुसी साडे पक्के स्रोते हो और हमेशा पक्के तौर ते साडे नाल मिल के रहियो जी।
1: अगला ईमेल है जी रजाक मोहम्मद दा इन्हां ने नाल ने शमीम बेगम इमरान खान इरफान ते जिशान खान हनुमानगढ़ राजस्थान तो।
0: जी
1: ये लिखते हैं कि तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम असीं हर वार सुनते हैं बहुत चंगा लगता है आकाशवाणी के 90 वरे पूरे होने ते बहुत बहुत मुबारकां सोहणी से प्रोग्राम सानू बहुत पसंद है इस विच जानकारी दे नाल नाल गीतां दे नाल मनोरंजन भी किया जाता है।
0: जी
1: हैलो फरमाइश दा मगजलंदर पैंदी चिट्ठियां मिठियां सारे प्रोग्राम साडी पसंद ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाने की गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ये ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगते।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है।

साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजाति

0: किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस

0: कार्यों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह

गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBS.

ये आकाशवाणी है। रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरो शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने

0: देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: In the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight, we present Sitar Recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned Sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya, under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later, in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan, of the Indore Gharana, famous for his Binkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit tintal, followed by madhyalaya tintal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Dhruti.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रही थी। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Raga Chayanat in the sitar recital. Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Raga Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Raga is set to Gat in Deep Chandi

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत उदय रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन
3: पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा

0: सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said government

0: जी दोस्तों, मच्छरदानी ला दे वे, मच्छर ने खा ली तोड़ के। बिल्कुल सही है जी, मच्छरों ने भी अपना जोड़े टाइम के मुताबिक उन्होंने भी आना शुरू कर दिता है। इस करके अपनी मच्छरदानी नूं जे कि माड़ा मोटा कोई कोई रिपेयर होने वाली है जरूर रिपेयर करवा लो। जिमें ये दोस्त कह रहे सन। लो जी, पहले कॉलर आ गए ने, पहला देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो
1: हेलो, जय माता जी। बस
0: जी, जय माता दी जी, कौन बोल रहे हो?
1: यशपाल भाऊ जी।
0: जी, यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। यशपाल जी पहुंच गए ने माता वैष्णो भवन तो, ते यशपाल जी सानू भेटा सुना के निहाल करते ने सवेरे सवेरे। और सुनाओ यशपाल जी, ठीक हो? बिल्कुल,
1: सब बढ़िया जी, बढ़िया।
0: अज पहले कॉलर बने हो तो फरमाइश दस दियो, कि लैके आए हो?
1: मैं सुना दो जी, मोहम्मद सदीक का गाना, मेरी ऐसी झांझर छणके छणकाटा पैंदा सी।
0: हाँ, मेरी ऐसी झांझर छणके छणकाटा पैंदा गली गली। बिल्कुल ठीक है जी, ये गली गली छणकाटा जड़ा है आपां सुनाने हैं मोहम्मद सदीक की आवाज़ दे विच। ते यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: जय माता दी जी।

0: जी दोस्तों बिल्कुल इसी तरह जी ऐसी मेरी झांजर छणके छनकाटा पैंदा गली गली। वैसे तो जी असी गलियां गलियां दे विच छनकाटा पा के आ गए हैं। इस वेले फिर दोबारा स्टूडियो दे विच प्रोग्राम सौगात दे राही तुहाडे नाल मुखातिब हो गए हैं और तुसी इस प्रोग्राम च पहुंच सकते हो। 0181 2342 171 नंबर डायल करना है और अपने दोस्त शाम शर्मा दे कोल आ जाना जी पंजाबी गीतां दी फरमाइश करन दे लई। और जे तुसी व्हाट्सएप मैसेज करना चाहुंदे हो 94-655-36-077। लो जी कॉलर आ गए ने और गलबात करदे हां जी। हैलो सत श्री अकाल जी। जी शरण जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। शरण बड़े दिनों बाद आए हो तुसी साडे कोले।
1: सर मैं तो आउंदी हां तुसी गुआचे सी किते
0: अच्छा गल इदा ना जी कि मैं तो एक अद्धी बार गायब होया पर तुहाडी तो हाजरी बहुत देर तो बाद लगी इस प्रोग्राम च मैनू जित तक याद है।
1: सर मैं एक कॉल लगी मेरे पापा ने कही रहा तू तूड़िया दी कपड़े सुई गुआच गई सुई लप गई।
0: अच्छा ओहो एमी भी हुंदा है लो जी तां हो गई लभण लभाण वाली गल। ती अज ना मैं एक विषय ते गल कर रहा सीगा कि अज ब्रदर्स डे है यानी कि भरावां दा दिन है अज। ते भरा दी जिहड़ी अहमियत है परिवार दे विच बहुत ज्यादा हुंदी है साडे सारयां दे लई चाहे वड्डे भरा होण छोटे भरा होण। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। वैसे तो भैणा लई जिहड़े भरा हुंदे ने ना वो वाकई जी एक चा तो वध ही हुंदा है। जदों किते पेकियां तो कोई आ जाए स्पेशली भरा आ जाए तो फिर तो भैणा नूं चा होर भी चढ़ जांदा है। यही गल मैं जी जी बिल्कुल ये जड़ा प्यार चाहिदा है ना ये प्यार उन्ना नहीं आजकल सानू देखण नू सुनण नू मिल रहा। असी मटीरियल जड़िया चीजा है ना उन्ना चीजा वाले ज्यादा ध्यान देन लग गए हैं। ये होना नहीं चाहिदा यानी कि भरा वर्गा प्यार तो कितों नहीं मिल सकता। हां बिल्कुल। देखो ना जदों तुसी तुहाडी शादी नहीं हुई सी और उस वेले जदों भैण भरा दी आपस लड़ाई हुंदी सी ना असी किन्ना गुस्सा करदे सी एक दूसरे दे नाल। और ये जड़ा प्यार बाद दे विच आंदा है ना व्याह तो बाद हो तो फिर वाकई जी एक देखण और महसूस करन वाला हुंदा है। ये गल सही है वो उस वेले क्यों हुंदा ना जी कि घर दे विच ते उदों ये कहने कि जिवें ये साडे कोल रहणे ही रहणे है और जदों फिर भैण चले जांदी सारे घर उदों फिर प्यार उमड़दा है। चलो जी बहुत अच्छा लग्या शरण तुहाडे नाल गल करके और अज फिर गीत केड़ा फरमाइश लै के आए हो। लो जी फिर असी अज लभ पए हां ते तुहानू गीत सुनाने हैं जोश बराड दी आवाज दे विच। शरण शुक्रिया कॉल करन दे लई। ओके जी जी दोस्तों व्हाट्सएप

0: जी दोस्तों, तेरे बिना ना गुजारा है। बिल्कुल जी, तुहाडे बिना गुजारा किवें हो सकता है। जे तुसी साडे प्रोग्राम चाहोगे ते साडा प्रोग्राम नूं 4 चन्न नहीं 8 चन्न तुसी ला दिंदे हो। जदों सारे दोस्त इस प्रोग्राम च अपने फोन कॉल्स दे राहीं हाजरियां लगवाउंदे ने और या फिर वट्सएप मैसेज दे राहीं अपनियां हाजरियां लगवाउंदे ने, ते तुहाडियां फरमाइशां जदों असीं शामिल करदे हां ते 8 तो भी 16 चैनल लग जाते हैं इस प्रोग्राम दे विच। इस करके तुहाडे बिना साडा गुजारा नहीं है। लो जी, कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो? दसूए तो बोल रहे ने। तरसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च। तरसीम जी, तरसीम जी की करते हो? अच्छा, इस वेले प्रोग्राम का आनंद मान रहे हो कला? हाँ
1: जी, हाँ जी।
0: अक्सर सुनते हो प्रोग्राम तुसी?
1: हाँ जी, हाँ जी, डेली सुन
0: रहे। हाँ, डेली सुनते हो, कॉल भी करते हो, चंगा लगता है ना प्रोग्राम?
1: बहुत जी।
0: आज केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: आज तुसी सावरगुड़ी दे सुना दे कोई गाना।
0: लो जी, सावरगुड़ी दे वास दे विच गीत सुनाने हो तुहानू। तरसीम जी, शुक्रिया कॉल करन दे लई।
1: शुक्रिया।
0: लो जी, साडे कोल वट्सएप मैसेज ने जिन्हां नू आपां शामिल करना है। कस्बा चिलकाना जिला सलेमपुर तो साढ़े दोस्त ने जी जरीफ अंसारी, नैम अंसारी, डॉक्टर आमिर मुन्ना नजीम होना ने सानू मैसेज भेजा सी। और ये साढ़े दोस्त आए ने जी पंडरपुर तो, जाकिर मुलानी, सुमया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर, सुलमा, मुमताज, दिलशाद मुलानी ते नसीर मुलानी, इन्हां दे चाचा चाची ते पूरा मुलानी परिवार उन्होंने सानू वट्सएप मैसेज किया है।

0: जी दोस्तों, सानू तेरा ही सहारा है। बिल्कुल, असी भी यही गल कह रहे हैं कि तारा अंबरा च कोई कोई है, सानू तेरा ही सहारा है। तो लो जी, फिर सहारा लेंदे लेंदे साढ़े को कॉलर भी आ गए ने। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़।
0: जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी स्वागत है जी।
0: राजू जी साड़ा अक्सर प्रोग्राम सुनते ने और रेगुलर कॉलर ने।
1: हाँ जी, कई सालों तक सुन रहे हैं सर जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, ते प्रोग्राम चंगे लगते ने ताई सुनते हैं।
1: हाँ जी, बहुत वधिया लगते हैं जी। पहला तो पता ही नहीं था भी फोन वाले प्रोग्राम भी है कि।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: लो जी,
1: पहला
0: फिर
1: तो 12 बजे तक ही चलता सी, एक मेरी अख काजली दा नाम पहला
0: हाँ
1: हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, वो 12 बजे तक चलता सी, एक मेरी अख काशनी, ते हुण सौगात चलता 1 बजे तक।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: क्योंकि कई दोस्त कहते
1: ये भी
0: सी
1: बाद से चलिया, 1 बजे तक भी 12 बजे तक चलता रहा सुन।
0: चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब तुसी सब जानी जान हो।
1: हाँ जी हाँ जी, थोड़े तो सीखे हैं सर जी।
0: लो जी, अज फिर तुसी प्रोग्राम दे विच आए हो, ते अज फरमाइश भी दस दियो।
1: सर जी, सुरजीत बिंद्रे खेड़ा की तला दो।
0: सुरजीत बंदरखिया की आवाज दे विच गीत सुनावांगे, तुहानू कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल कर लिए नाल
1: हाँ
0: नाल।
1: जी हाँ सर, सारे पढ़ दो जी।
0: हाँ लो, ठीक है जी, ठीक है। शुक्रिया जी कॉल करने के लिए राजू जी,
1: धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। लो जी, सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत वर्मा, सोनम वर्मा होना ने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया सी, ते ये साढ़े दोस्त जिन्ह ने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया सी, सरदना मेरठ तो अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी एम जैन, ते इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त ने, आदि जैन, अंश जैन, भव्या जैन, ते इन्हां दे परिवार दे सारे तमाम दोस्त सरहदी बाजार पटियाला तो, प्रेम कुमार रहीजा, कांता रानी, चरण रहीजा, डैनी, नीतू, ज्योति, सजनी होना ने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है, ते कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करन, गीतू निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता होना ने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है। लो जी, सुरजीत बिंदरखिया की आवाज़ के विच तुहाडी सारयां दी फरमाइश पूरी की जा रही है।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल सही किया ना जी। मैं तो मुखड़ा देख के मर गया सी। दिल तेरा किहो जिहा होना, मैं तो मुखड़ा देख के मर गया सी। गल सही है जी, मैं तो मुखड़ा ही देखता हुंना, और दिल नू कौन देखेगा। पर दिल नू उदों आपां देख सकदे हां जदों आपां किसी नू महसूस कर सकीए। जे तुसीं किसी नू महसूस ही नहीं करोगे तो फिर दिल का किवें पता लगेगा कि दिल किवें दा। इस करके महसूस जरूर करो अपने साथी नू। लो जी, साढ़े को कॉलर आए ने, इन्हां नू पुछदे हां जी। हैलो
1: हेलो शांता जी, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: शांता जी बिट्टू बोल रहे हैं।
0: वाह जी वाह, बिट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। यश भाजी आ गए ने और वो गली गली च छंटकाटा सुन के चले गए ने। बिट्टू भाजी ने पार्टी भी रखी हुई है, जिदन पार्टी देंगे उदन सारा ने पहुंचना भी। देखो जी, जो तुसी हाक मार लेनी है ना उदो सारा ने पहुंच जाना, चिंता ना लो। हाँ बिल्कुल, देखो पार्टी ड्यू हैगी है जरूर जी। ये खुशियों का जरा मौका है, ये आप सारे भुलाना चाहिए आके। है बिल्कुल, क्या बात है बिट्टू जी, बहुत वधिया लगता है तुहाडे नाल गल करके। जो तुसी आने हो ना उदो रौनक लग जांदियां ने। बिल्कुल जी, साड़ा परिवार इसे तरह परिवार साड़ा बढ़ता रहे, खुशियां मानता रहे। है जी, यही असी दुआ करने रब को। अज फिर फरमाइश कि लेके आए हो?
1: बोल।

0: जी दोस्तों, सुन ढोल जानी बोल मेरी रानी। वाह जी वाह, गल सही है जी। जिथे प्यार हुंदा है ना उथे रानी फिर अपने आप आ जाती है। और प्रोग्राम सौगात दे विच साडे कोल जिहड़े दोस्त पहुँचते हैं इस प्रोग्राम दे विच, हुण जिवें बिट्टू भाजी कह के गए ने कि परिवार इस तरह रब करे खुशियां भी माणे ते साडे परिवार दे विच इस तरह वाधा हुंदा रहे। बिल्कुल जी, प्रोग्राम जिहड़े साडे नवा नवा सुनते हैं और इस प्रोग्राम च अपनी हाजरी लगवाते हैं तो इस तरह साडा जिहड़ा परिवार है वह होर वध है। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हैलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, होर सुनाओ हाले चाले। हाले
1: चाले वधिया
0: ने। अच्छा, मनजीत कौर जी बोल रहे ने। मैं भी जमी आवाज जानी पछानी लग रही सी, मेनू लगिया कि मैं मनजीत जी आ गए ने।

0: इस बाबुल दे बेड़े च ना आए। लो जी फिर इदे मनजीत जी ने यह फरमायश की सी और तुसी सारे ने फरमायश की थी, असी तुहाडी फरमायश करती पूरी। तो हुण चलिए जी अगले कॉलर वल। लो जी कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हैलो
0: सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं संतोष कुमार यादव कोलीकट मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। सर आप तो जो आप बोले थे जो ना इसके इसके बारे में बोलिएगा, मैं इधर में सीखती हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। ये वाले है ना जो आपने टॉपिक, कौन सा टॉपिक है ये इधर नेटवर्क कटता है ना?
0: ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रदर्स स्पेशल डे, यानी कि जो भाई होते हैं ना ये आज उनके लिए स्पेशल डे मनाया जा रहा है।
1: ये ना जो जो भाई होता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, जो भाई होता है, भाई होता बाप से बड़ा होता है, जो भाई बड़ा भाई कोई भी है ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बड़ा भाई कोई भी गलती कर दे, कोई भी गलती, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ
0: जी,
1: तो जो उस पे है ना गौर नहीं करना चाहिए। जो छोटा भाई होता है ना, छोटा, मैं छोटा हूँ
0: जी,
1: बड़ा भाई बोल दे तो उस पे उसके बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए। जो भाभी होता भाभी होता है, जो है ना भाभी, ये
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल आपने सही बोला है कि जो भाई
1: जो
0: होता है ना
1: वो भी बोल दे तो उसपे है ना, जो बड़ा होता है वो बोले तो छोटे को उसके मुंह पे जवाब नहीं देना चाहिए, उसको जवाब नहीं देना चाहिए। और छोटा भाई जो होता है, जो जो बड़ा भाई होता है वो बाप के दाखिल होता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, जो होता है बड़ा भाई होता है वो बाप के दाखिल होता है, जो बड़ा भाभी होता है वो माँ के बराबर होता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, हिंदी में भी बोल रहे हो लेकिन बात बहुत पते की बोल रहे हो कि जो बड़ा भाई होता है वो बाप के बराबर होता है। जब बाप चले जाते हैं ना इस दुनिया से,
1: बाप के बराबर जो भाभी होता है वो माँ के बराबर,
0: माँ के बराबर,
1: बड़ा कोई भी बोल दे उस पे है ना छोटे भाई को गौर नहीं करना चाहिए। हाँ वो है ना सच्चाई पे है ना, जो भाभी बोल दे ये, और अपना पूरा सच्चाई भी चलना चाहिए, जो मेरे को बड़ा भाई क्या बोल रहा है, मेरे को भाभी क्या बोल रहा है, वो इंसान को सच्चाई भी चलना चाहिए। और दूसरा कोई भी बोले जो ये आपका ये बोल रहा है ये जो है ना, जो गलत हो, और गलत का कभी भी साथ
0: नहीं देना चाहिए,
1: सच्चाई का साथ देना चाहिए। हाँ। और कभी भी जो माँ बाप होता है, जो भाभी हो भाई हो, वो अपने है ना घर का कोई भी बुरा नहीं सोचता है,
0: नहीं सोचता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: भाभी होता है वो माँ के बराबर होता है, भाई जो होता है बाप के बराबर होता है वो। और कोई भी जो है ना, कोई भी इंसान जो आपके बारे में आपको बोले आपका भाई ऐसा हो, तो भाई ये चीज पे जो है ना विश्वास मत कीजिएगा। जो आप देखो जो मेरा भाई कैसा है, और जो है ना भाई और भाभी जो होता है वो माँ के बराबर होता है, और इंसान को सच्चाई पे ये दूसरे के चक्कर में कभी भी नहीं जाना चाहिए,
0: नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल संतोष जी आपने जो बातें कही हैं बहुत अच्छी करी हैं कि हमेशा जो है वो भाई का मान सम्मान जो है वो अपने फादर से ज्यादा करना चाहिए। हैं
1: बिल्कुल सर, मैं सर ये चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं भाई में अकेला हूँ, मेरे पास नहीं डैडी है, आपको मालूम है मैं 1991 से मैं उधर से मैं जुड़ा हूँ, मैं पंजाब से भी मैं केरला आया, मेरे को पूरा मालूम है। और कोई भी मैं ना पंजाब में मैं डेली बात करता हूँ, डेली में बात करता हूँ, और मैं बिल्कुल सच्चाई पे मैं जिससे बात करता हूँ, और मैं पंजाब बात करता हूँ तो मेरा डैडी है, मेरा मम्मी है, और इतना प्यार है ना पंजाब से, इतना प्यार है, मैं क्या बोलूं आपसे,
0: क्या बात है। तो बिल्कुल जी ये पंजाब से प्यार इसी तरह से बना रहना चाहिए, इसलिए तो आप सौगात प्रोग्राम में आते हैं। और आज बताइए कौन सा गीत फरमाइश लेके आए हैं आप?
1: सर मुझे है ना इतना आपसे बात होता तो मैं खुश रहता हूँ, नहीं रहता हूँ। अपने मन पसंद का है ना जो है ना मम्मी पापा के जो कोई सॉन्ग हो वो सॉन्ग सुना दीजिए आप।
0: चलो मैं आपको गीत जो आपने बोला था कंठ क्लियर की आवाज में वो मैं सुनाऊंगा। तो शुक्रिया कॉल करने के लिए संतोष जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: ओके जी, लो जी ये सन साडे दोस्त जिन्होंने सानू कहा सी कंठ क्लियर की आवाज दे विच गीत सुना दियो तू चेते आवे, पर भुल गए फिर गल्लां करदे करदे। पर करो जी कुछ वट्सएप मैसेज शामिल कर लैने हैं। कस्बा बराड़ जिला अंबाला हरियाणा तो रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल, तो इन्हों के परिवार के होर बहुत सारे दोस्त ने। तो ये साढ़े दोस्त ने जी बाजवा कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम चंद, अनमोल दीपक, तो सारा ही

0: जी जी दोस्तों, बिल्कुल तू चेते आवे। और ये जड़ा गीत है, इस दे विच भी बहुत डूंघाई है प्यार दी, मुहब्बत दी। ते इंसान जो महसूस करता है ना मुहब्बत नू, उस वेले फिर ये विछोड़ा याद आता है। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी। हेलो
1: हेलो श्याम शर्मा जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हूँ?
1: मैं डेरा कॉलोनी 5 से कर्मा सागर बोल रहा हूँ। धन्यवाद
0: जी, धर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक
0: ते
1: यू।
0: धर्मा जी प्रोग्राम सुन रहे हो, चंगा लग रहा है?
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया सर जी। अभी रूह भी खराब है, आकाशवाणी जलंधर का
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही किया जी। ते आज फिर फरमाइश दस दियो
1: कुछ भी
0: कड़ी।
1: चंगा लगता है, जिस दिन आकाशवाणी जलंधर ना सुनी तो कुछ भी नहीं चंगा लग रहा पूरा।
0: ये तो गल बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये फिर आपां नूं एवें लगदा है कि जिवें साडा अज कोई चीज़ साडे
1: हाँ जी,
0: नाल
1: हाँ
0: नहीं हैगी है। ते वो तां ही हो
1: जी,
0: सकदा जदों तुसीं प्रोग्राम नूं सुणोगे, ते फिर ही आपां नूं रोटी हजम होनी है, ते
1: मैं
0: फिर ही आपां नूं
1: पूछ रहा
0: नींद
1: हूँ
0: आनी है।
1: सर जी, आकाशवाणी जलंधर ने जिंदगी बना दी साड़ी
0: अच्छा,
1: बचपन तो लैके हुण तक।
0: क्या बात है, ये गल सही है जी। बहुत चीज़ां जड़ियां हैं इस तरह दियां, आकाशवाणी जलंधर तो सानू सारयां नू सिखण नू मिलदियां ने।
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया जी। तो अज फिर धर्मा जी केड़ी फरमाइश लैके आए हो?
1: ये सुना रहे नरेंद्र भी पर मैंने रेशमी रुमाल वांग रखने।
0: रख मुंडिया, बिल्कुल जी सुनाने हैं। तुहानू शुक्रिया जी कॉल करन दे लई। लो
1: थैंक
0: जी,
1: यू।
0: ये तां साडे दोस्त ने फरमाइश करती नरेंद्र बीबा दी आवाज़ दे विच गीत सुनन दी। ते तुहानू मैं कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करके इन्हां दी वी फरमाइश पूरी करदे हां। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो इन्हां ने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है। जलालाबाद पछमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा होना ने सानू मैसेज भेजे है। ये साढ़े दोस्त ने जी, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पिंदर कुमार डुड्डी ते इन्हां दे परिवार के बहुत सारे दोस्त। ते ये साढ़े दोस्त ने जी जिन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया ते गुड्डू हुणा ने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया है। लो जी, सारे की फरमाइश से नरेंद्र बीबा की आवाज़ के

0: जी दोस्तों बिल्कुल, ये प्रोग्राम दे विच सौगात दे विच तुसी भी आ सकते हो। 35 मिनट का हले वक्त पिया है, जिन्हें दोस्तों ने हले तक सानू कॉल नहीं की है जरूर कॉल करो। 0181 43 142 171 नंबर डायल करके थोड़े दोस्त यानी कि थोड़िया जो फरमाइशा है वो थोड़ा दोस्त शाम शर्मा पूरियां करेगा और व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल करेगा। इस करके तुसी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसी तरह लगे रहो मेरे तक पहुंचने दे ले। लो जी कॉलर आए ने, देख लिए जी केड़े दोस्त ने। हेलो
1: नमस्कार शर्मा जी,
0: जी, नमस्कार जी, कौन
1: भूषण
0: दोस्त बोल रहे?
1: कटारिया मलोड़ तो बोलना सर।
0: जी, भूषण कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद जी।
0: भूषण कटारिया जी साढ़े को पहुंच देने सारियां दी कॉल सुनने तो बाद। ऐदां ही जी।
1: सही है जी, सही।
0: हाँ, ते हो सुनाओ, सब ठीक हो? गर्मी तो
1: बड़े
0: बचे हो।
1: वधिया कृपा मालक दी जी।
0: चलो, मालिक दी कृपा रहनी चाहिए जी, और जब मालिक दी कृपा है तो फिर समझो अठो अठ हो गया।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अज केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: ओ सर, आ सज्जना में नहीं हो, कदे झगड़े करी दे गुरदास मान जी दा।
0: लो जी, सज्जना वे सज्जना सुनाने जी, तुहानू शुक्रिया जी कॉल करन दे लई।
1: मेहरबानी जी।
0: ओके जी, लो गुरदास मान दी आवाज दे विच गीत दी।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात दे विच तुसी बन सकते हो जी अपनिया सुनिया सुनिया फरमाइशां लैके। ये प्रोग्राम का वेला रह गया तकरीबन 27-28 मिनट का। लो जी फिर साढ़े दोस्त पहुंचे ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: राम प्रसाद बोल रहा, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट।
0: जी राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू जी बहुत ज्यादा। ते अज रसगुनिया साहब नहीं आए?
0: रसगुनिया साहब नहीं, हल तक रसगुल्ला लेके आए अपना है जी?
1: नहीं आए, नहीं
0: पहुंचे। नहीं बिल्कुल जी, आवाज थोड़ी आ गई है। ते जी कदे
1: नहीं आए
0: है जी?
1: जसपाल,
0: यशपाल जी आ गए सी।
1: आए गए
0: अज? यशपाल जी ते आ गए, अपनी पहली हाजिरी लगवा के चले गए।
1: हां जी,
0: पहली हाजिरी उन्हां दी लगी सी अज।
1: फिर प्रोग्राम फोन नहीं
0: चंगा अज लगदा तुसीं जी। बस बस इसे करके बहुत सारे साथी आ चुके ने, एक दो साथियों नूं छड्ड के। ते राम प्रसाद जी, तुसीं तां साडे पुराने स्रोते हो, तुसीं तां वक्त नूं चंगी तरह जानदे हो कि आकाशवाणी जलंधर हमेशा वक्त दा पाबंद है।
1: हां जी, 1985 तों सुणदा।
0: प्रोग्राम
1: जदों अपने पुराने कलाकारां दा गाड़ी ही जदों।
0: हां बिलकुल बिलकुल। देखो जी, ये एक जरिया है जिस दे विच तुसी एंटरटेनमेंट भी हुंदा है ते जानकारियां दा खजाना भी है आकाशवाणी।
1: हां जी हां जी,
0: प्रोग्राम सुनदे हो, चंगे लगदे हो, ताही तुसी साडे तक इन्नी देर तक बने हुए हो।
1: ये लगाओ जी, मैं रेडियो मनोरंजन दा साधन सब तो वधिया।
0: बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। इस तो वधिया कोई साधन हो नहीं सकता। अज फिर तुहाडे मनोरंजन दे लई केड़ी फरमाइश शामिल करिए इस प्रोग्राम च?
1: ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾ ਦੋ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ
0: ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਣ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
0: ਹਾਂ सुरेंद्र खोली दी आवाज़ दे विच। शुक्रिया जी कॉल करन लई राम प्रसाद जी।
1: थैंक यू जी।
0: ओके जी, लो जी सुनाने आ तुहानू सुरेंद्र खोली दी आवाज़ दे विच ई गीत।
2: असा चलाया चक्कर, हाय हाय, मख

0: गई, होय होय होय होय मंगनी हो गई, हाय हाय हाय हाय मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी मंगनी।
1: जी दोस्तों, क्या खूबसूरत गीत, सुन कुड़िए मेरी मंगनी हो गई, क्या वाद है जी। हुणे राम प्रसाद जी गीत सुना के गए सानू सारिआं नूं, ते सुरिंदर कोहली ते सविता साथी दी आवाज़ां दे विच गीत सी जिहड़ा आपां सुणिआ। ते लो जी, फिर हुण चलिए जी अगली कॉलर च। हैलो,
2: हैलो,
1: स्वागत है जी प्रोग्राम च, कौन बोल रहे हो?
2: सर, मैं शांता वर्मा बोल रही हूं।
1: जी जी कांता जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
2: बिल्कुल जी, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे
1: हैं। तो आप प्रोग्राम सुन रही हैं, अच्छे लग रहे हैं इस समय भी?
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: पंजाबी गीत अच्छे लगते हैं आपको?
2: बहुत बढ़िया जी, ब्याह शादी में भी चलते हैं पंजाबी गीत ना।
1: हाँ बिल्कुल, अभी तो कोई भी स्टेट हो ना, पंजाब के गीत तो चलने ही चलने हैं।
2: बिल्कुल चलते हैं जी,
1: क्योंकि वहीं पे ही उन्हीं गीतों के ऊपर ही जो है वो डांस होता है, उन्हीं गीतों के ऊपर एंजॉयमेंट होता है।
2: बिल्कुल होता है जी, हमारे पहाड़ी।
1: हाँ बिल्कुल, तो फिर आज आप कौन सी फरमाइश लेके आए हैं हमारे पास?
2: आप सुना दो बाबू मान की बात में, सुना दो कोई भी सॉन्ग सुना दो, और सब जितने भी हमारे प्रोग्राम सुन रहे उनको डेडिकेट है ये गाना।
1: लो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कांता जी, ये गीत सबके लिए कांता जी ने डेडिकेट किए हैं, तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू।
1: ओके जी, लो जी फिर गीत सुना रहे हैं तुहानू बब्बू मान दी आवाज़ दे विच, ते उस तो बाद असी मैसेज जिहड़ा है वो शामिल करना है तिमान परिवार होना दा।

जी दोस्तों, मेरे दिल विच तेरा घर होवे, कदी आया कर कदी जाया कर। क्या बात है जी, प्रोग्राम सौगात दे विच भी कदी आया करो कदी जाया करो। लेकिन जाए जिवें वादा कीता सी ना, साडे दोस्त ने यशपाल धीमान मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र तों, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल कोमल, शुभम, प्रियंका, आंचल, कुंज, प्रवीण धीमान, चिराग धीमान, रजत धीमान, राजेश धीमान, इन्होंने सानू वट्सएप मैसेज किया है।

लिख देने जी। श्याम जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत दिन के बाद आते हो, हमारा दिल आपको बहुत याद करता है। कितना बढ़िया प्रोग्राम देती हूँ, और कुछ तारीफ करने के लिए भी मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उसके बारे में बहुत इंतज़ार आप लंबा करवा देते हो, और कभी कभी रविवार को भी गायब हो जाते हो। चलो कोई बात नहीं, आज मैं खुशी है कि आपने बहुत अच्छे विषय पर बात करी है। भाईचारा बहुत जरूरी है, भाई तो भाई है, हमें भाई का सम्मान करना चाहिए। हमारे भारत में इसका बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, बहन भाई का प्यार भी बहुत ज्यादा है। त्योहारों में भी पता चलता है, जब हम

0: गायब हो जाते हो। चलो कोई बात नहीं, आज हमें खुशी है कि आपने बहुत अच्छे विषय पर बात करी है। भाईचारा बहुत जरूरी है, भाई तो भाई है, हमें भाई का सम्मान करना चाहिए। हमारे भारत में इसका बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, बहन भाई का प्यार भी बहुत ज़्यादा है। त्योहारों में भी पता चलता है जब हम भाई इकट्ठे होते हैं, भाइयों का सम्मान करना चाहिए, और जो भाई साथ देता है और कोई साथ नहीं दे सकता। अपने बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि आपस में प्यार रखो, और शुभम जो राहुल दो मेरे बेटे हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि प्यार रखो, और प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बढ़िया लगा जी आपका मैसेज जो पढ़ के दीवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे विषय के ऊपर जो बात कही है। बिल्कुल, भाई तो भाई होते हैं, और हमेशा भाई का साथ भी देना चाहिए, भाई की बात भी माननी चाहिए, और भाई के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्योंकि भाई ही हमेशा दुख में काम आता है। इसलिए हमें हमेशा भाई का ही होके रहना चाहिए। तो लो जी, फिर इन्होंने सानू कहा जी कि बाबा बेखड़ा मलोड गीत सुना दियो, जगमोहन कौर ते के दीप दी आवाजा दे विच ये गीत सुना दें तो फटाफट सुनो जी।
1: बाबा गड्डी क्यों रोकी आ?
2: की दसा कुड़िए, गड्डी दा तां गेर ही अड़ गया।

0: जी दोस्तों, साढ़े कॉलर भी आ गए ने। देखिए जी, केड़े दोस्त ने। हेलो
1: नमस्कार शर्मा जी,
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रही हूँ?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीरा मलोड़ तो। धन्यवाद
0: जी जी महेश गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: जी।
0: हो सुनाओ, प्रोग्राम दा पूरा एंजॉय कीता तुसी 2 घंटे।
1: हाँ बहुत जी, आखिरी स्टेशन ते आ गए हम
0: वही तो गल है कि तुसी साडा आखिरी डब्बा फड़ लिया है।
1: अरे डब्बा भी आखरी स्टेशन भी आखरी
0: स्टेशन भी आखरी, बिल्कुल सही किया। ते लो जी, फिर गीत भी दस दियो, अज कि फरमाइश की है?
1: है। रणजीत कौर दा सुना भाई, तैं मैनू अज मार पवाई नणा
0: लो जी, सुनाने हैं जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी।
1: धन्यवाद जी।
0: ओके जी।

आत्म रस जिह जानिया हर रंग सहजे माण नानक तन तन तन जन आए ते परवान। इस लोक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है जो उन्हां सतपुरखां दी महिमा नूं बयान करता है जिहड़े प्रभु दे नाम रस नूं माण के आत्मिक रंग दी गूढ़ी रंगत विच रंगे जांदे ने। आप अनुसार ओ जन धन हन ते अकाल पुरख दी दरगाह विच परवान हुंदे हन। आप इत्थों तक बयान करदे हन कि ऐसे संत जना संत महापुरशां दा इस लोक विच आउणा धनता योग है जो आप भी इस भवसागर विचों पार लंघ जांदे ने ते कुल सृष्टि दे जीवां नूं भी पार लंघा दिंदे ने। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां सिरलेख अधीन उचारी हुई बाणी विच एक पदे दी पंक्ति विच साहिब फरमाउंदे ने, तन तन तन जन आया जिस प्रसाद

तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां सिरलेख अधीन उचारी हुई बाणी विच्चों इस पदे दा गायन कर रहे सन भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दा रागी जत्था। गुरमत विच नाम नू पार जात रुख काम तेन गऊ दे तुल ही नहीं, सगों इस तो भी उच्चा स्थान प्राप्त है। नाम दी रंगत मजीठी रंगत है, ए रंगत इस कदर अजीम जज्बा पैदा करती है कि इस नाम विच रंगे हुए सूरमे खुद नू कुर्बान कर जांदे ने। शहादत खिड़े मत्थे देण वाला ही शहीद अखवांदा है। शहीद दरअसल अरबी भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ है शादी भरना अर्थात गवाही देना। गुरमत विच सच दी शादी भरन वाले नू जां सच वास्ते कुर्बान होण वाले नू शहीद बयान किया गया है। गुरबाणी विच राग श्री राग विच श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने कि पीर पैगंबर धार्मिक आगू सतपुरश शहीद शेख खाजी मुल्ला ते सच्चे फकीर नता प्रति उस प्रभु दे गुण गायन करदे हुए उसकी बख्शिश दे पात्र बनते हैं। ताते इन्हां दी पहुँच प्रभु दे दर घर तक हुंदी है। साहिब फरमाउंदे ने पीर पैगंबर सालक सादक सोहदे और शहीद सेख मसायक

0: अजी मुल्ला दर दरवेश रसीद, बरकत तिनका अगली पड़दे रहन दहूद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच शहीदी परिभाषा अते संकल्प नू बाखूबी बयान किया गया है। सुनते हाँ प्रोफेसर अपिंदर सिंह होरां पासों वार्ता गुरबाणी विच शहीद दा संकल्प।
1: शहीद दा संकल्प दृढ़ करन लई पहलां शहीद शब्द दे अर्थां नू समझण दी लोड़ है। शहीद शब्द अरबी दा कुरानिक शब्द मन्या जांदा है, भाव शब्द अरबी दा है ते कुरान विच वरत्या गया है। इस करके शहीद शब्द दे सही अर्थ समझण लई कुरान दी उस आयत नू वाचना जरूरी है जिस विच शब्द दी वरतों कीती गई है। नौवीं आयत दे 48वें सूरे अनुसार असी निरसंदे तैनू अपने गुणा वास्ते शहीद अर्थात गवाह ते शरधालुआं लई खुशखबरी देण वाला अर्थात इनकारियां नू हुशियार करन वाला बना के भेजा है। शहीद दा अरबी कोश अनुसार अर्थ भी गवाह ही कीता जांदा है, पर आयत 169 दे तीसरे सूरे अल इमरान अनुसार जो लोग अल्लाह दे राह विच मारे गए तुसी उन्हां नू कदे भी मुर्दे ना समझो, ओह तां अपने सिरजणहार दे हजूर जिउंदे हन अते उन्हां नू रोज़ी भी दित्ती जांदी है। इस आयत अनुसार शहीद दे अर्थ युद्ध विच कुर्बान होना मन्या गया है। हौली हौली इस शब्द का अर्थ विस्तार हो गया अते इसनों कुर्बानी जां बलिदान दे अर्थां विच ही वरत्या जान लगा। भारत विच शहीद जां शहादत का दृष्टिकोण सामी संस्कृति तो आया। इस तो पहला भारत की संस्कृति इस शब्द तो सखणी सी, इस शब्द के भाव तो रहत सी। सिख समाज विच शहादत का संकल्प वक्रे ढंग नाल विकसित होया। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने सिखां दे खून विच शहादत का तत् शामिल कर दिता अते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत की इस भावना की अपनी शहीदी नाल पुष्टि कर दिती। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चारे साहिबजादियां ने तां इतिहास दे पत्रियां उत्ते अपनी रत दा कुंगू पा दिता। मुसलमान हुकमराना ने हज़ारां दी गिणती विच सिखां नू शहीद कीता। जदों गुरबाणी अनुसार शहीद दे संकल्प नू दृढ़ कीता जांदा है तां साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने शहीद नू पीरां पैगंबरां दे बराबर रख्या है। श्री राग विच स्पष्ट कीता है, पीर पै कामर सालक सादक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेस रसीद। धर्म दे मार्ग ते ओही व्यक्ति चल सकता है जिसने अपनी मत गुरु चरणा विच अर्पण कर दित्ती होवे, अपने सीस नू गुरु चरणा विच निशावर कर दिता होवे। ओही रब्बी गुणा नू ग्रहण करके होमे रहत हो के पर उपकारी जीवन जीवन दे समर्थ हो सकता है। साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी एक श्लोक विच स्पष्ट करते हैं, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै काण ना कीजै। आसा दी वार विच शहीद दे संकल्प नू स्पष्ट करते हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, लख सूरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करतै करना किया लिखिया आवण जान, नानक मत्ती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। गुरबाणी अनुसार मैदाने जंग विच जिन्ने मर्जी कारनामे दिखाए जाण उस दी रहमत दे पात्र बनन तो बिना गुरबाणी विच हिरदे अंदर चल रहे विकारा नाल

जाकौ हर रंग लागू इस जुग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर, मुन बंश जाकी शरण सत गुर गुर से, अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनंग।

अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करनं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनं।

शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को काहे जियो सुथरचित भगत हित पेख तरयो हर नक सरयो नक विदार जियो संघ चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरम पर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा।

0: तत का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका। तू सतगुरु चो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिहलो है अगम निगम उदरण जरा जमे अरव गुर अमरदास तिर थप्यो परगामी तारण तरण अग अंतक बदे न सल कव गुर रामदास तेरी शरण गुर रामदास तेरी शरण।
1: या खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत सेती मन खचना। या खेल बड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद याद जस कोई न जाने शिव ब्रंच धर ध्यान नितह जस भेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित्त हे बस।
2: वाहु वाहु का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे

0: गुरमुख संगत सबे बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगटत दिने आगर गहर गंभीर था यात बाड़ सो पर सदा सब

दर्शन गुरु सगल सुख सागर। सतगुर के माताने आ जुग जूत समाने, अनपौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने।

दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण हुए सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तुदृठ सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी

हर रस चोग चुग है प्रभ पावा। सर्वर मह हंस प्राण पत पावा। गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संत चुग नहीं दूरे। हर रस चोग चुग प्रभ पावा। सर्वर

कहता पढ़ता सुनता एका धीरज धर्म धरणी धर टेका जात सत संयम हृदय समाय चौथे पाद का

श्याम कहे सितंबर स्वामी सच मह अच्छा साच रह सबको सच समावे ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय ले प्राचित जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे जुज मैं जो

पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोल जी वाहे गुरु बोल जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकिया झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बगसो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्सना सुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देख हाजर है दर परवान होवा परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्सो सुख होवा नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरब